जी, सर्बत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछे आरे आयत। देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिज तेर पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बाण त्रिण कहत तो सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरियावली जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए धन धन पिता धन धन कोल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए धन धन गुरु जिन नाम अराध्या आप तरिया जिनी डिठा तिना लय छड़ाए हर सतगुर मेलोह दया कर जन नानक धोवै पाए श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंग

लापट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। बिखिया मैं केनही त्रिपत न पाई, ज्यों पावक ईदन नहीं तरापे, बिन हर कहाँ अगाई। रहाऊ

दम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम बंत कामी बहु नारी, पर गृह जोह ना चुके। दिन प्रत करे करे पछतापे, सोग लोभ मह सूके। हर हर नाम अपार अमूल, अमृत एक निदाना। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। हर हर नाम अपार अमूल, अमृत एक निदाना। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा, वड़े वड़े राजन अर भूमन, ताकि त्रिशन ना बूझी, लापट रहे माया रंग माते, लोचन कशु ना।

रंग परंगा ने कण जापन करतबा जिया इंद्र जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरे कर आनंद।

पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुहदाए दया खेल सगर जगत चंगे आया बुरे आईया वाचा धर्मूर करमी आपो अपनी के नेड़

ते है मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई।

महत दिवस रात दोय दाई दया खिले सगल जगत चंगे आइया बुरे आइया वाचे त्रमहदूर करमी अप अपनी

पंजवा काही रि मन चित वह उद्दम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मह जंत उपाई ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया ऊडे ऊडे आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन।

पुरुख अपरंपर करता जी तुद जीवड अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोई। तुद आपे सृष्टि सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई। रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनों कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखह जानह सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ पैले निवासा पानी पावक तिन है किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबियाले। मन एक न चेतस मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हौ जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा पही परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरै कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाओ

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन कौ आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चौने चौने सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारी पच्छा, श्री अस तुझ जू करियहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझिया हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बीद पीद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बेद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा।
अंडज जेरज सेतज कीनी, ओत पोज खान बहोरे रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संग रहो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दा

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। ओ राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न माने। ओ सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कह हम एक न जाने। ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने। ओ दोहरा

हार मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया, हार गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख न व्यापय। गुर चरण लागे दिन सपागे अपना पिर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम तत् कर भोगो। बिनवंत नानक प्रभ आप मिलया, कहे नानक प्रभ आप मिलया, करण कारण जोगो। गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रिद अंतर तारी, दर्श सफलियो दर्श पेखियो, मन निर्मल उजियारी। बिसम बिसम बिसम पही आग कोट हरते नाम लई। गुर चरण मस्तक डार पही प्रभ एक तू ही एक तुही। भगत टेक तुहारी जन नानक शरण द्वारी। सतगुर सत सतगुर कै शब्द सत, सत साध संगत है गुरमुख जानिया। दर्शन ध्यान सत शब्द सुरत सत, गुरमुख संग सत सत कर मानिया। दर्श ब्रह्म ध्यान शब्द ब्रह्म ज्ञान, संगत ब्रह्म थान प्रेम पहचानिया। सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान, काम निह काम उन मानिया। सत रूप सत नाम सत गुर ज्ञान ध्यान, काम निह काम उन मानिया। सो कहौ टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाइ। दर्शन परसिय गुरु कै जन्म मरण दुख जाइ। होवै सिफत खसम दी नूर अरसह कुर सह चटिया। तुद डिठे सच्चे पात साह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाहु।
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੁ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾ

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो। सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद।

रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सत जुगते माण्यो छल्यो बल बावन भायो, त्रितै ते माण्यो राम रघुवंश कहायो।

उग्रसेन कौ राज अबे भगत जन दियो कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो।

0: जावे पूर सगल्या पाव लिखिया सिरलेख नानक निरपो निरंकार सच एक महला पहला
1: नानक निरपो निरंकार हुर के तेरा मरवाल केती

0: कड़ियां सब गोपियां पैरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मूसै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला
1: वाइन चले न चन गुर पैर खलाए न फेर न सिर उड़ोड़ावा झट पाए वेख लोक हसै कर जाए रोटियां कारण पूरा ताल आप छड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सतनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी करम लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत आनंद लाटू मधाणिया नंगा पंखी पौनिया लैना सा सूए चढ़ पुआई है जंत नानक पौंदियां गणतनांत बंधन बंद पुआए सोए पया कृतन चै सब कोए।

मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही सालान दर्शन रूप अपार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बैकार जोगी सुन त्यावण जे त्याला।

की पेड़े पई कुमियार कड़ पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रूवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन

पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता दीपालोआ मंडला खंडावर पंडा अंडर जेरजुत पूजा खानी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै संभाले सबना।

दान महिंडा तली खाक जे मिले तो मस्तक लाई है। कूड़ा लालच छड़िया होए एक मन लख त्याई है। पल ते वेहो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे होवे पुरु लिखे दा धूड़ तिना दी पाई है। मत थोड़ी सेव गवाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है।

तुर करम जिना को तुद पाया ता तिनी खसम त्याया इना जनता कैवस किछ नाही तुद वे की जग तू पाया एक ना नो तू मेल लहका पुत दुख आया गुर कृपा ते जाने।

प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जोगण अम्बरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिनको अवतार पयो कल पिंतर जस जगत।

जय सतगुर सिमरंत नयन कहते मर मिटे खेन, जय सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जय सतगुर सिमरंत जे के तप्त मिटावे, जय सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नवनिद पावे। सोई रामदास गुर बल पन मिल संगत तन तन करो, जे सतगुरु लग पाई है सो।

0: एक गरु सुख पायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो।
1: सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कोर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुरत दवन सकल पवन कुशल करण सर्ब भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच कच हो बराहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार हिये तार तज विकार मन गय अंदर सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोविंद जियो हम

माया मोह परम पैपुल सुत दारा से प्रीतन एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत ते हे मिलंत जम त्रास।

0: सीरत की गुर रामदास राखू सरनाई एक अरदास पाट कीरत की गुर रामदास राखू सरनाई
1: सो कहो टल गुर सेविया एहन सहज सुपाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफ तख संबंधी नूर अरसह कुरसह सचे पात सहा मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साहो सिर सहांदे जिस पास बैठिया सोही सब नांदा सजन सचा पात साहो सिर सहांदे जिस पास बैठिया सोही है सबनां दा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा घर पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब जग जिन्ह उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी बथ सब जग जिन्ह उपाया पाई करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई दे कर अपनी बथ किन कहिए क्यों देखिए भाई करता एक अकथ गुर गोविंद सलाहिए भाई जिसते जापै तथ मेरे मन

दुख दर्द का हंता रहाओ, जाके कर सब किस है पाई, नौ निद परे पंडार, तिसकी कीमत ना पवे पाई, ऊंचा अगम अपार, जी जंत प्रतपाल दा पाई, नित नित करदा सार, सतगुर पूरा भेटिया पाई, शब्द मिलावन हार, सच्चे चरण सरेविया पाई, भ्रम भौ होवै नास, मिल संत सभा मन मांझिए पाई,

पौड़ी सतगुरु विट होवारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान जंदी है नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहता विरलै कि न विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा।